पर असी नाम दा स्वाद छड के रसा कसा विच फस गए, अहंकार विच फस के दुख पाए। ए दुख तेरे भेजे हुए नहीं, ए साडे अपने ही सहे।

तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही तां रिद्धियां सिद्धियां नूं प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर लई। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों वली कंधारी जिहड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे, तपस्या कीती, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा है। धन गुरु नानक पातशाह, क्योंकि जगत जलंदे नू ठारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा है, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है, ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं, पापी नू तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी, पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैठ के बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है तो आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहे, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नूं पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह, अच्छा अहंकार दूर जो करना सी। मर्दानिया आ दो पत्थर पुट, सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके तो विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया, मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां। आ मैं हुणे दसदा हां, अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा, महाराज कृपा करो, मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, मर्दानिया तू करतार नू चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहिंदे हन ना, उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एदा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती, कृपा कीती, कोट ब्रह्मंडा दे बांधे जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता, ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी, धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा ए मेरे अहंकार नूं दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिद्धियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा है रब। हो सकदा है मैनू तारन लई मेरियां रिद्धियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनू तारन आया होवे, मन नीवा हो गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਬ ਲੋ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਛਿੜਤੇ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ।

संसार तार दे होए जिथे जिथे भी गए वड़े तो वड़े पापी नू किवें तारिया जिवें सज्जन नू संत बना दिता भूमिए चोर नू साधु बना दिता आप ही नहीं अनेकां नू गुरु नानक दे चरणां नाल जोड़न वाला बना दिता दीपालपुर दे कोड़ी दे पास गए ता उसनू भी फिर यही शुभ उपदेश दिता पाई जिस वाहिगुरु ने तैनू सोना ए मनुच्छा जन्म बख्शिया सी अखां नक कन मूह आरोग कंचन वर्गा शरीर दिता सी जे तू शुकराना कर दो जे तू उसका सिमरन कर दो ता आज तेरी ए हालत ना होंदी बचपन खेड़ा विच जवानी विकारा विच तैं बतीत कर दिती उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं तू भुल गयो विसार दिता ते जदों तू विसारिया ता फिर दुखां ने आ घेरा करदिया ते अज तेरी ए हालत हो गई याद रख जिस तरह हुण तेरा शरीर कोड़ी है ना तैनू कोई नाल नहीं बैठन देंदा शहरों बाहर कढ दित्ता लोगां ने तैनू जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावेगा आत्मा तेरी कलंकित होई होवेगी दरगाह विच भी तैनू कोई कोल ना बैण देवेगा क्योंकि कोल ओही बैठदे हन जिन्नी तेरा नाम ध्याया धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने जिसना ने अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम ध्यावना कीता है सिमरन कीता है इसलिए उन्हां दा ही आउणा सफल होया है।

सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि गत मित कोई न लाख है, प्रभु के सेवक को कोन पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दे दिस पर घटाया, नीकी कीरी मैं कल राख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है, जिसका शासन काटते आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बहुपात, किसके कर्तव्य बिरथे जात, मारे न राख है अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी, बारम्बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत इहु मन तन तृपिए, नाम तन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही दृष्ट आया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तिपताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जहवा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म कह चाये, प्रभ अपने से रहे समाये, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म बिछाने, जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कह एक न जानो, आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्स सब पाप मिठावे, अवर सयान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन

प्रभु की जरा गल सुना दे, संसार के विकारां दे बंधना तो जरा बचावे। है कोई ऐसा सज्जन मित्र, है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो दियो अर्पो अपनो जीत, ओदे नाल पक्की सांझ पा। श्लोक वारा ते वधीक पढ़ने आ, साहिबा ने कहा जे तू

एक ओंकार सारगुरु प्रसाद, यू नो, सारगुरु प्रसाद. इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. एंड व्हेन आई ट्रांसलेट गुरबानी इनटू इंग्लिश, आई ट्रांसलेट इट लाइक दिस. एक ओंकार, आई नो दैट आई एम वन विद गॉड एंड गॉड इज वन विद मी. सारगुरु प्रसाद, दिस इज माय ट्रू गुरुज गिफ्ट टू मी टू हैव दिस एक्सपीरियंस. The experience that I'm one with God is a gift from my Guru. So when you say Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar Sadguru Prasad, it's the most powerful thing because it reminds you who you are, that you are one with the Infinite, that everything is Prasad, everything is Guru's gift to you, even the painful things. It's all Guru's gift. And if anything that happens to you, you can say, Sadguru Prasad, what problem do you have? Huh? You don't have any problem at all.

0: एक प्रेमा कोड़ी होए। इदे माता पिता बड़े सौखे सन, घर विच कोई औलाद नहीं सी, अरदासां करदे सी हे वाहिगुरु कोई बूटा लग जावे, तन दौलत बेशक चला जाए पर कोई बूटा लग जावे। परमेश्वर दी नेत दे नाल इस दा जन्म होया ता माता दा प्यार नहीं नसीब होया। माता उठ गई थोड़ा समा पा के, पिता दा साया भी उठ गया। इनू रिश्तेदारां ने पालिया जेड़े चंगे मनुख सन, ओ तां वांडे तुर गए ते माड़ी संगत ने आके, माड़े लोगां ने आके धन दौलत भी इसते पासों जितना सी लुट ली। ते इनू घरों बेघर कर दिता, ना माता दा प्यार नसीब होया, ना पिता दा छाया रहा, ना धन दौलत रही। शरीर भी हुण कण कण करके घटन लगा, क्योंकि जदों धन दौलत मुक जाए कोई रिश्तेदार नहीं बनता, कोई साख संबंधी नहीं बनता, कोई खबर नहीं लैंदा, कोई मिलन तक नहीं आउंदा भाई कोई मांग ही ना पा देवे। उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: हुण इस ए हालत हो गई प्रेमे दी के शरीर फट गया, कोड़ हो गया शरीर नूं, ते किसे ने तरस करके इदे गल विच एक मिट्टी दा कसोरा जिहा पा दिता। कोई बंदा इदे ते तरस करदा तां उस कसोरे विच कुछ खान पीन दियां वस्तुआं पा दिंदा, कोई रोटी पा जांदा, कोई कुछ पा जांदा। धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे दर्शनां नूं संगतां जा रहियां सन, इसने भी बेनती कीती। उन्हां कहा भाई तू नाल नाल आ जा, जे आ सकना तां किसे तरह भी ए जफर जाल कटदा छपर कटदा गोइंदवाल साहब पहुंच गया, पर अपने आप नूं योग ना समझ के दरबार विच नहीं गया, बाहर ही बह गया। ते जदों गुरु की बाणी कन्ना ते पैनी बड़ा प्रसन्न होना, मेरा गया खसोटा लद्दा, मेरा गया खसोटा लद्दा, हर वेले पढ़दे रहना। गुरु के सिखां ने शब्द भी सिखाए, कोई शब्द दी तुक दे जावे तो सारा दिन उदा जाप ही करदा रहना। जपजी साहब दा पाठ भी इसनू जबानी याद हो गया। प्यार वाले सिखां ने गुरु अमरदास पातशाह जी नूं भी बेनती कीती, महाराज एक कोड़ी बार बैठा, शरीर तां कोड़ नाल भरिया होया पर बड़ा खुश लगदा है जदों आप दे प्रवचन सुनदा है, बाणी कन्ना नाल सुनदा है, तां बड़ियां कच्छा मारदा है, नचदा है, खुश होंदा है। उहदे ते भी रहमते नदर करो। अज ओ समा आ गया कि धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने एक प्रेमी नूं चिट्टा चदरा दे के आख्या भाई जिथे साडे इशनान दा जल जिस गड़े विच पैंदा ना, टोए विच पैंदा, उस जल दे नाल इशनान करा के ते ए चिट्टा चदरा पा के दरबार विच ले आओ। जां प्रेमे नूं लियांदा गया।

आप उन्ना दे करो करी छड़ के आए, उन्ना दा लुटिया माल वापस कराया। अगर उस वक्त ओ गुरु के प्यारे सिख अहमद शाह बदाली दे काफले ते हमला ना कर दे, ओ हिंदुस्तान दिया बहु बेटियां गजनी दे बजारा विच दो दो पैसे विच विकनिया सन, पर सिंगा ने अपनी जान तली ते रख के उन्ना बहु बेटियां दी इज्जत बचाई। अहमद शाह बदाली नू बड़ा बुरा लगा, उन्ने हुक्म जारी कीता कि सारे सिख खत्म कर दियो। मीर मन्नू बड़ा जालम सी, इस मीर मन्नू जालम ने हुक्म जारी कीता कि सिखां नू खत्म कर दियो। सिंह जंगलां विच चले गए, जंगल नू अग लुआ दित्ती, पर गुरु के सिंह जेड़े जुलम दे खिलाफ लड़दे ने, सच वास्ते लड़दे ने, देश कौम दे भले वास्ते लड़दे ने, घोड़िया ते सवार, एक हथ विच कृपान, एक हथ विच केसरी निशान, अग लगी हुई है, दुश्मन नाल भी लड़ रहे ने। उस वक्त सिंह जकारे छड़े

छोटे बच्चियां नूं उन्हां मावां दे सामने मारना, उन्हां दे छोटे छोटे टुकड़े करके जिवें कोई फुल्लां दा हार बनांदा है, बच्चियां दे टुकड़े करके उन्हां दा हार बना के मावां दे गल विच पा देना ते नाले कहना मुसलमान बन जाओ, नहीं ते तुहानू भी इसे तरह खत्म कर दिता जाएगा। पर तन हन ओ गुरु के सिंह, गुरु कियां सिंघणियां जिन्ना जान ते दे दिती पर धर्म ना हारिया। ए जुलम हो रहा सी पर गुरु के सिंह कदी जुलम तू घबराई नहीं। उस वक्त दी ए इतिहासक बोली के गुरु के सिंह मीर मनु दे

सताए हुए हिंदुस्तान दे लोग जेडे गुरु साहिबां नूं पसंद करदे सन उन्हां विच मुसलमान भी सन जेडे मुगल हकूमत दा जुलम पसंद नहीं सन करदे। ओ सारे लोग गुरु साहिबां दा हमेशा साथ देंदे रहे ने जेडे इंसानियत नाल प्यार करदे ने क्योंकि गुरु साहिबां दा एहो ही मकसद है रब एक है उन्हूं किसे नाम नाल याद करो।

लोग बड़े दूर चले गए। गुरु ने खालसे नूं अपना स्वरूप दिता है ते ना लिखे आ, जदू तक खालसा खालसा रहेगा वो कदी हारेगा नहीं। मैं भी उहदे नाल रहांगा।

जिहदे विच कोई विकार नहीं, वैर विरोध की भावना नहीं, जिहदा जीवन विकारां तों उत्ते है, ओ खालसा ते खालसा गुरु दा रूप। पर बड़े ऐसे लोग ने जिन्हां दा पहरावा ते है पर ओ गुरु के सिख नहीं। दाढ़ी भी रखी है, केस भी रखे ने, पर जदू तक जीवन उच्चा नहीं ओ गुरु के नहीं बन सकते। कईयां दा पहरावा संता महापुरुषां वाला, भगतां गुरमुखां वाला, पर ओ ना भगत ने, ना गुरमुख ने, ना सिख ने, ना ओ खालसे ने। सिर्फ पहरावे दे नाल कोई इंसान गुरु दी खुशी प्राप्त नहीं कर सकदा। ऐसी गल नहीं, किस दुनिया विच संत महापुरुष गुरमुख नहीं है। गुरमुख भी हैगे ने, भगत भी हैगे ने, महापुरुष भी है ने, खालसे भी हैगे ने, पर बहुते धर्म तो दूर, गुरु तो दूर दुनिया नूं धोखा दिंदे ने। महापुरुषां दे

असलियत वाला जीवन नकला भरिया जीवन नहीं, अंदरू होर बाहरू होर जेहो जिहा जीवन होवेगा ते कौम नू हमेशा औकड़ां दा सामना करना पवेगा। जगह जगह सिर ना चुकाओ, वखरे वखरे राह ना

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र शब्द के विच पैरों महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं। अंधले क्या पाया जग आया, इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इत्थे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह, वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी, वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहिब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

वस्तु काया दे अंदर है, अते जड़े काया दे अंदरों उस वस्तु नु नहीं पहलदे, नहीं ढूंढदे, कहिंदे हो अति मूढ़ हन, अति मूर्ख हन, अते बेताले, उन्हां दी जिंदगी दे विच कोई भी सही चाल नहीं, बेताल लोग हन, मूढ़ लोग हन, मूर्ख लोग हन। सो इस स्टैंडर्ड दे नाल, इस मेजरमेंट दे नाल, इस गेज दे नाल सारी सोसाइटी मूर्ख बन जाती है, क्योंकि बाहर पहलती है। सुगुरु बाबा जी की तालीम सानू समझा रही है कि इस जन्म दे विच तुसी कुछ पाण लई आए से, अते ओ जो वस्तु है ओ तुहातों दूर नहीं। अगर तुहाडा कुछ भी जिंदगी च नुकसान हो गया है, कुछ भी तुहाडा खो गया है, नो मैटर हाउ मच यू फील दैट यू आर ए एब्सोल्यूटली फेल्यूअर, स्टिल वो जो पाउण वाली वस्तु वो तुहाडे अपने ही पास है, वो तुहाडे अपने अंदर है। सो तुसी कुछ भी खोया नहीं है, डिप्रेस होने की, होपलैसनैस च जाने की तुहाडे लिए कोई गुंजाइश नहीं छड़ी, क्योंकि अखीरले दम तक वो वस्तु जो तुसी पानी सी वो तुहाडे अपने अंदर, अखीरले दम तक जदों चाहो उस पासे नूं अपनी डायरेक्शन तब्दील कर सकते हो। सो अगर असीं स्पष्ट तौर पे इतना ही गुरु बाबे दा उपदेश समझ लईए ते उस नूं धारण कर लईए कि असीं इस जन्म दे विच कुछ पाण आए सी, अते ओ वस्तु जो पाण आए सी ओ साडे अपने अंदर है। हुण ए सवाल सानू पुछण वाला है कि असीं अपने अंदरों कुछ लभ्या है जां नहीं लभ्या। अगर असीं अपने अंदरों कुछ नहीं लभ्या तो फिर असीं चाले मूल गवाए, फिर असीं सब कुछ खो के इत्थों जाण वाले लोग हां। अगर असीं अपने अंदरों कुछ नहीं पाया, नहीं खोजिया, तो फिर असीं अंधले लोग हां। तो गुरु बाबा जी फिर सानू देख के हैरान होके ये शब्द उचार के इस तरह गायन करते हैं, अंधले क्या पाया जागाए, ऐ अंधे इंसान तू जगत च आके की पाया है, आओ सारे नाले गाओ, नाले अपने अपने अंदरों अपने अपने आप नू ये पुछो कि वस्तु जड़ी मैं पाउनी सी, महाराज दसदे हन वो मेरे अपने अंदर ही है, उसनू मैं अपने अंदरों पाया है या नहीं पाया, जे नहीं पाया तो मैं की कर रहा हाँ, की करदा रहा हाँ, ते अग्गे नूं हुण मेरा की विचार है। आओ प्यार नाल

सोचो नाल नाल करके इस कीर्तन में आहिस्ता आहिस्ता कराऊंगा ताकि सिंह रिफ्लेक्ट कर सकिए, अपने ते सवाल उठा सकिए, जाग सकिए, ते अपने अपने जीवन होर किसे दे नहीं, अपने अपने जीवन ये पूछ सकिए कि मैं आके की पाया है, मैं की पाया है, अते पौन वाली वस्तु अंदर सी, उस अंदर वाली वस्तु नू मैं पाया है जा नहीं पाया, जे नहीं पाया तो फिर हाले तक का जीवन मेरा वो वेस्ट गया है। महाराज जी आखते हैं भई तुहाडे अपने ही अंदर वस्तु सी, दूरों कितों लभण नहीं सी जाना, घरों बाहर जाने की भी जरूरत नहीं सी क्योंकि वो तुहाडे अपने अंदर है, अते उस अपने अंदर वाली वस्तु नूं तुसी पा नहीं सके फिर माण कड़ी गल का करते, तुहानूं अपने आप से किस गल का माण है। और दूसरी गल, अपने आप नूं तुसी स्याणे किवें समझदे हो? देखो अपने अंदरों ही एक ट्रेजर सी, वो तुसी पाया नहीं, और उसके बावजूद भी अपने आप नूं तुसी स्याणे भी समझदे हो तो फिर मान पड़ी पता नहीं किस गल का करी बैठे हो। यह तो बहुत ही एक शर्मसारी वाली गल है कि साढ़े अंदर कोई अमलीक खजाना है, असी उसनू ही नहीं देख सके, उसनू ही नहीं पा सके, पाया कुछ भी नहीं, तो माण इतना वड्डा, माण नाल असी भरे पए हैं, पता नहीं असी की पा लिया है। पता नहीं असी की पा लिया है। गुरु बाबा जी हुण शब्द उचारदे कहिंदे हन, ऐ भोलीए इंसान नूं आख्या है, भोलीए जिंदड़ीए तू किहड़ी गल दा माण करदी है, किस गल का माण कर दी है? कहते हैं

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी, उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच वो थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

कहिंदे कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वह परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाए उस ते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उस ते कोई असर नहीं हुंदा, उसनूं पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनूं कुछ किया जाए उसनूं भी पता नहीं चलता बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनूं भी कोई पता नहीं चलता कि क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हां, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हां, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं लियाएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, असि फिर भी राम ना बैठे रहिए? वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सभी गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सभी गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सभी गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हो, जिंदगी उस तरह की ही रही कि असि अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसको खोजन की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवारती है, शिंगारती है, प्रतिपालती है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पाल, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजे है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवा नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ए जिहड़ी देही है ए घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है। इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इस नु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हैं। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति कि इस दियां इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ धोई फिरदियां हन, ओ खिची फिरदियां हन सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिरदी है, धोई फिरदी है। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसको रोकना चाहे वो रुके ना, तो किसी खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इसनू अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, तो इसनू उस पासे वल जाण नू वरतो जिस पासे वल जाण नू तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नू जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दिओ कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दिओ, इस दी आदतां विगड़न ना दिओ, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इस नू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि यह तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूनां तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना अज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनूं मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नू बुलाना हूं, सारी संगत उसनू बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जाती, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोलो, तो ये पंक्ति आपनू याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ ਇਤਆਦ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ

कर दे हाय हाय। ये मत समझ पाप दा बीज बोना तो बड़ा सौखा है, आ जदों किकर दा बीज वेखिए तो बड़ा मखमल वर्गा बड़ा कूला होंदा है, बड़ा सोहना होंदा है, पर जदों बीज बोइए तो जेड़ा फिर पौधा उगदा वो कंडिया दा भरिया होया, जिथे हथ लाएगा कंडे ही कंडे हैं। पाप दा बीज तो बड़ा प्यारा लगता है पहला, पर जदों प्रफुल्लित होंदा ही फिर ये जीवन नूं कुंभी नरक बना देंदा है। इसलिए हजूर कहिंदे हन पापां तों डर, कोई चंगा कर्म करना है तां उसे वेले कर लै, जे मन विच फुरना होया किसे पाप करन दा तां सोच उस नूं देरी पा, हो सकदा है कोई तेरा चंगा कर्म तेरे सामने आवे तू पापां दे रस्ते तों हट जावें। इसलिए

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

गोबिंद हर जन राखे गुरु गोबिंद कंठ लाए कंठ लाए अब गुण सब में तेरे।